0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: क्या आप जानते हैं अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी गैर फाल मनसूख शुदा या ऐसी सिम से मुंसलिक है जो अब आपके इस्तेमाल में नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई खो सकते हैं। अपने व्हाट्सएप अकाउंट और जाती मालूमात के तहफ्फुज़ के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका व्हाट्सएप हमेशा एक फाल और आपके जर इस्तेमाल सिम से मुंसलिक हो। अपनी सिम की हैसियत बाकायदगी से चेक करें और नंबर तब्दील होने की सूरत में व्हाट्सएप पर अपना नया नंबर बरवक्त अपडेट करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
2: What does the transition to Takaful mean for Pakistan's insurance sector? Find out this Friday on Policy Unplugged, an exclusive podcast series by FM 91 in collaboration with the Insurance Association of Pakistan. Our host, Sara Meeman, sits down with Mr. Asfar Arshad, Managing Director and CEO of Jubilee General Insurance, to discuss the Takaful transition of Pakistan's insurance sector and explore what this shift means for the future insurance in Pakistan. Tune in to FM 91 this Friday, 16th October at 5 p.m. Watch the full episodes on the FM 91 YouTube channel at 6 p.m. Policy Unplugged, making insurance conversations matter.
0: Follow us on Instagram, FM91.official.